मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कल्चर बस्टर सबको गोली मारो, दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कल्चर बस्टर सबको गोली मारो, मुक्त मिले जब दिल की बुटिया फिर सदमी को झेलो, मजा ले लो। घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा गेलो ओ गेलो ओ गेलो ओ घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा गेलो ओ गेलो।

कि भगवान का नाम लिए बगैर हमारा जीवन अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। और यही समझाने के लिए कुछ बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं, जिससे ये बात स्पष्ट होती है, समझ में आती है।

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
2: De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk 9 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug veroorzaken file op de A15 richting de Maasvlakte. De extra reistijd is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन दोनों बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन आप उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

0: सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।
1: अंधेरा है तो रहने दो, मुजस्सिम चांदनी हो तुम। अंधेरा है तो रहने दो,

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नेलोंग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए खाया है बिनकोट रावा तोर विवाह होने वाला है तोर शादी होने वाला है जनवालो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खाया है बिनकोट रहा तोर विवाह होने वाला है तोर शादी होने वाला है नेम कांटेक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

तुम ही तुम हो मेरी निगाहों में, रब ने भेजा है तुम्हें दुनिया में मेरे लिए। उजाला रेडियो है ये। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, एन हेल गुए मोर्ग, वन हार्ट वेलकम बाय उजाला रेडियो। आज बुधवार है 14 अक्टूबर 2026। हम आपको तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं। मौसम हो या ना हो, हमारा दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं दी ओपनिंग सेलेक्शन की तरफ। मेरे हिस्से के प्रोग्राम में इस तरह से पेश है आप सभी के लिए।

बारिश लिए बादल चले आते हैं, आपने सुने। धूप निकल आया है, सूरज निकल आया है, मौसम कुछ अच्छा होने वाला है मेरे ख्याल से। तो चलो इस मौसम का ज़रूर से आप ही मज़ा लीजिएगा। आपको पता है अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हो तो ज़रूर से कीजिएगा, लाइव एंड डायरेक्ट स्टूडियो में 9203639898 पर 0203 6308 08

की हल्की सी बरसात आ गई साज भत से आपने गीत को सुना है। आतिफ असलम को ला रही है आज की सुबह के प्रोग्राम में।

ना सुने तो इस दिल का बताओ मैं क्या करूं। हमेशा दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या करूं, करूं तो क्या करूं। Een goedemorgen, Yvonne Daulet al afgestemd en Mr. Scheersing Den Haagse. आप सभी को बहुत ही प्यार से स्वागत करते हैं उजाला रेडियो के सुबह के प्रोग्राम में। और जैसे आप सभी को पता है नवरात्र चल रहा है, तो हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके मन के मुरादे ज़रूर से मारी पूरा करें इस नवरात्र में। जो भी मन के मुरादे हैं उसके सामने रख देना। सच्चे दिल से प्रार्थना करने वाले आपका हर प्रार्थना स्वीकार हो, आपकी हर मन की मुराद पूरी हो।

मिला जो तुमसे अरिजीत सिंह विद सुकून मिला। अगर आपसे मिले और सुकून नहीं मिले तो मुझे पता नहीं कि फिर क्या कहने को। मिलते हो तो सुकून मिलना ही चाहिए ना। आदनान सामी एंड महालक्ष्मी आयर।

0: हो तुम जो मिले हमको अदनान सामी एंड महालक्ष्मी आयर से आपने गीत को सुना है उजाला रिज है ये है दिस इज यू आर एंड दिस इज कविता रानी वेयर एवर यू आर यू लिसनिंग टू यू आर Een hele goede morgen, Radhe Radhe, Parivar Bihari Breda ze. En hun zeggen ook, het wordt schitterend weer. Laten wij dat hopen, dat het een hele mooie dag wordt voor elk een. Aur ye to bach chuka hai, ye wala.
1: Kuch kahaniyan samandar ki tarah hoti hain. जरूरी भी अधूरी भी एक किनारे से पूरा समंदर नहीं दिखता ना ये कहानी पता नहीं समंदर है या जरूरी है

0: फिर मिलने का वादा था, ये किस्सा तो आधा था।
1: और अगर ना दिल भर के बातें किया और ना कोई वादा किया, तो सच में ये किस्सा आधा था, अधूरी मोहब्बत या आधा। आरजू है वफा करे कोई, आरजू है वफा करे कोई, जी ना चाहे तो क्या करे कोई। गर मर्ज हो दवा करे कोई, गर मर्ज हो दवा करे कोई, मरने वाले का क्या करे कोई। कोसते हैं जले हुए क्या क्या, कोसते हैं जले हुए क्या क्या, अपने हक में जरा दुआ करे कोई।

दिल बेपरवारे जुबेन नौतियाल की आवाज़ में आपने गीत को सुना है। उनसे सब अपनी अपनी कहते हैं, मेरा मतलब अदा करे कोई। तुम सरापा हो सूरत तस्वीर, तुमसे फिर बात क्या करे कोई। जिसमें लाखों बरस की हूरे हो, ऐसी जन्नत को क्या करे कोई। तुम क्यों चले आते हो।

0: कोई नशा है बस तेरी आंखों के प्याले में, विकी सिंह से आपने सुने। आशिकी बेदिली से मुश्किल है, आशिकी बेदिली से मुश्किल है, फिर मोहब्बत उसी से मुश्किल है। इश्क आगाज ही से मुश्किल है, इश्क आगाज ही से मुश्किल है, सब्र करना अभी से मुश्किल है।
1: याद है हम पहली बार कब मिले थे?
2: स्कूल में?
1: नहीं, एयरपोर्ट पे। पता है मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं।

रब करे तू भी जागे रात दिन, दिल ना लगे तेरे बस मेरे बिन। जोगराज कौशल से आपने गीत को सुना है। और शायद आप रास्ते में हो, गाड़ी में हो, रास्ते के हालात पर ज़रूर से ध्यान देना। एंड यू नो इट्स, आपका सफ़र ज़रूर से सफल हो। आपको याद रहे कि आपको व्हाट्सएप या मैसेज या ईमेल चेक करना मत करना अगर आप गाड़ी चला रहे हो। तो यू ड्राइव सेफ। आसा है और हमारे लिए, हम आसा है और हमारे लिए दुश्मनी दोस्ती से मुश्किल है। जिनको सब बेवफा समझते हो, जिनको सब बेवफा समझते हो, बेवफाई उसी से मुश्किल है। एक दो दूसरे से सहल न जा, एक दो दूसरे से सहल न जा, हर कोई हर किसी से मुश्किल है। तू बेजिद है तो जा मगर, तू बेजिद है तो जा मगर, वापसी से उसी गली से मुश्किल है।

और तेरे होतों के कवाल तुझसे क्या कहता है, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि enjoy every day, हर एक वक्त हर एक पल का आप ज़रूर से मज़ा लीजिए। आपको पता है 10 बजे के बाद में शुरू होता है यू आर पे कॉफ़ी टाइम मेरे साथ, तो आप तैयार हैं? Enjoy your day as it comes your way.

0: हमारा
1: तो सही।
0: अगर मिलते हैं तो कॉफी पीने के लिए, गपशप करने को, आपके कॉफी चाय या जो भी आप पीने वाले हो तैयार हैं, तो चीयर्स गाइस। हे फोन।

और तुम मिलो तो सही है ना परिवार बिहारी ब्रेडा से हमारे साथ कॉफी पी रहे हैं इफोन दौलत एक सियतार दे ए कॉपियर है लाइक एंड रॉय पराख आप भी तैयार है कॉफी पी रहे हैं कहीं ना

और अक्सर कॉफ़ी पीते पीते प्यार हो जाता है और अक्सर लोग पहले डेट पे जाते हैं, बस बहाना यही होता है कॉफ़ी पीने के लिए, सही या नहीं? है रीता सुतरमेर में भी प्रोग्राम सुन रही है, वेलकम।

हम तुम्हारे मुंडे नैना, आपने गीत को सुना है। अभी अभी तो मिले हो तो फिर ना करो जाने की बात। Een hele goede morgen Pooja uit Purmerend. Van harte welkom bij ons. और बहुत से लोग हैं जो मुझे प्राइवेट व्हाट्सएप कर रहे हैं। प्लीज़ आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ, आप स्टूडियो के व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजिएगा। इट इज़ हेल एरख अफलाइडेंट, तो इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ स्टूडियो के व्हाट्सएप पर 9 3 6 3 9 8 9 8 पर ज़रूर से हमें व्हाट्सएप भेजिएगा। और आप बताइए आपके शहर में मौसम कैसा है, आप कैसे हैं, आप कर रहे क्या, काम पर हो या घर पर मज़ा ले रहे प्रोग्राम का, बताइएगा ज़रा। थोड़ा सा गपशप हो जाए आपके साथ।

मेरे सोने सोनिया, ओ मेरे रांझिया, थाम हाथ जो वो फिर से नहीं छोड़ना। सौरभ गंगल एंड अनुष्का गुप्ता से आपने गीत को सुना है। और एक बार हाथ थाम लिया तो कैसे छोड़ेंगे बीते कल को। हमें आगे बढ़ना है। ऐसी माराम के जो नई

वो क्या मंजर जहाँ तुझको ना देखूं, पलक देखूं, जमी देखूं या तेरा चेहरा देखूं। तो आप क्या कहोगे? मैं तो कहूंगी फलक ना दे ना जमी दे, बस चेहरे को देखते रहो। सोनू निगम से आपने गीत को सुना। एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम सुन रही है मरीता, माय सिसी इन देन हाग। फन हार्ट से वेलकम बे ऑन्स। और देन हाग का मौसम कैसा है?

नाराज हो, अगर कोई नाराज है तो क्या करे, उसे मना लो। अगर कोई दूर है तो उसे पास बुला लो, और अगर कोई पास है तो उसे गले लगा लो। सजावत अली की आवाज़ में आपने सुना है। जो ख़ुद को कह रहे हैं कि मंजिल शहनाज है, जो ख़ुद को कह रहे हैं कि मंजिल शहनाज है, उनको भी क्या ख़बर है, मगर पूछते चलो। किस मंजिल मुराद की जनीब रवा है हम, किस मंजिल मुराद की जनाब रवा है हम, ऐ राह रवाए खाक बसर, बस पूछते रहो। आप सभी को एक शुभ और मुबारक दिन पेश है। आप जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, मेरा प्यार आपके दिल तक पहुँचे। और दिनाख में मेरी बहन कह रही है, फिर दिन खरा रहे थे सोख सोनख इत सोनख दानी नमस्तरम, इस वक्त यहाँ 12 खरा रहे, 12 खरा रहे सेल्सियस। तो चलो, आप कुछ और खुश नसीब है हमसे, बस मज़ा लेते रहो प्रोग्राम का और मौसम का, और जो भी आप करते रहो, कीप ऑन स्माइलिंग, पास इट ऑन टू अदर्स, सो द होल वर्ल्ड वुड बी स्माइलिंग। एक मुस्कुराहट किसी की तरफ और पूरी दुनिया मुस्कुराए।

इग्नोर करना बनता है बड़ा माइंड ब्लोइंग। आपको सुनाए मिक्का सिंह आज के प्रोग्राम में, और इस घंटे के प्रोग्राम में आप ज़रूर भी सुनोगे पुराना गीत, पुराने गीतों की शौकीनों के वास्ते।

दमदरा दमदरा मस्त मस्त बिन तेरे क्या जीना ये रहमान। बहुत से लोग इस गीत में गाए हैं, अपने वोकल्स दी है, अपनी आवाज़ दी है। तो देखते हैं आपके लिए मैं क्या चलाने वाली हूँ इस वक्त। और वो है एक गीत जो उन दिनों में बहुत ही पॉपुलर था, दिल तेरा आशिक़।

तू है सनम मेरा प्यार मेरा दिल तेरे आशिक कुमार सानू आओ का जी नदीम श्रवण ने साथ सजाए हैं समीर के कलम से निकले हुए खूबसूरत अल्फाज आपने सुने हैं।

हम तेरी मोहब्बत में यूँ पागल रहते हैं, दीवाना कहते हैं, दीवाना करते हैं। तो अभी नहीं ये होना चाहिए। तो किसकी बिल्ली है? Hey, कैसा स्विट्जरलैंड? आप सभी को स्वागत करते हैं उजाला रेडियो के सुबह के प्रोग्राम में। आप सभी को शुभ नवरात्रि पेश है।

एक खुशी की तलाश में थे, एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तरफा गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। तो बढ़ते हैं कुछ पुराने गीत की तरफ। अब आपके लिए पुराना गीत पेश होने वाला है, पुराने गीतों के शौकीनों के वास्ते स्पेशली। कोई काश जरा दिल पे हाथ रख दे, कोई काश जरा दिल पे हाथ रख दे, मेरे दिल के टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ रख दे। मगर ये तो ख्वाबो ख्यालों की दुनिया है, ये तो ख्वाबो ख्यालों की बातें हैं, कभी टूट कर चीज भी कोई जुड़ नहीं पाते।

आपसा पहले कोई हमने देखा ही नहीं। पद्मश्री मोहम्मद रफी। Hey, this is you all and this is Kavita Rani. Live and direct program nashar hota hai Studio 21 se. Amsterdam, the city. The heart of Holland.

गुरु सनम काहे गम। और कुछ ही मिनट्स बाकी है 12 बजने में, यानी 5-6 मिनट्स बाकी है 12 बजने में। तो एक आखिरी गीत हो जाए आपके नाम। और आपसे यही कहूँगी साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। कहती है आपसे आपकी रानी। नवरात्र चल रहे हैं तो आप सभी को एक शुभ नवरात्रि पेश है। सच्चे दिल से प्रार्थना करने वाले आपके हर एक मन की मुराद पूरी हो इस नवरात्र। और आप एक दूसरे के लिए बस प्रार्थना करते रहो। बहुत से लोग हैं जो मंदिर जाएंगे, तो खूब दिल लगा कर प्रार्थना करो।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हम

0: कुछ कहो भी हमसे, बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

0: मिलेंगे आपसे। नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, अपना ख्याल जरूर रखना। लव यू ऑल एंड बाय बाय टू द फोखंड के रहत बस मैं भी रखूं
1: नहीं देख
0: साइनिंग ऑफ फॉर
1: हो तुम सा नहीं देख
0: उजाला रेडियो।

ये है उजाला उजाला कॉफी चाय मिदक शो भी शुरू होने वाला है सुन वालों जूम दे उजाला रेडियो के जरिए कॉफी चाय मिदक शो पेश किया जाएगा मेरे जरिए नेचुरली के साथ दे रहे हैं आनंद चंद्रिका सिंह जूम दे नाद हिट्स एंड ऑन सोना चिरैया जरूर सुन लेना उजाला कॉफी चाय मिदक शो Welkom op deze mooie woensdagmiddag.

तो उजाला रेडियो के जरिए भी आपने सुने हैं, उजाला से कॉफी चाय मेरा शो शुरू हो गया है सुनवालो। और हम आपसे बता दूं, आज भी फरमाइश है दो बजे से सुन लेना उजाला रेडियो पर, फन ऑफ द ईयर फरमाइश और उजाला रेडियो। तुम्हारी फरमाइश देवे, तोर फरियारी है, तोर जन्मदिन है, सालग्रह है, तोर ब्याह हुई गया है बिन कोतरा, या तो और भी कोई खुशियाँ है, dan stuur jij een mail naar info@ujala.nl. 15 aanvragen voor €100 op Ujala.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

6:12 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज बुधवार है 14 तारीख अक्टूबर, वुंसडाग 14 अक्टूबर 2026। तो आज फिर एक बार जबकि मौका मिला है तो आपकी सेवा करने चले आए हैं लाइफ एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतन राम से। अब से 9 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा और पेश करेंगे हम प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। तहे दिल से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक शुभ रात्रि, अगर खा रहे हो तो स्वादिष्ट भोजन हो, पका रहे होंगे तो स्वादिष्ट भोजन फॉर लेटर, काम पर हो तो दिल लगाकर काम करना, अगर सड़क पर आप हिस्सा ले रहे हैं किसी भी तरह तो संभाल के, विदेश में हो तो एंजॉय, और अगर हमारी इस देश में भी आए हैं छुट्टियां मनाने के लिए तो भी वेलकम। मेरे प्यारे सुनोलो, हमारी ये प्रोग्राम आज जो हम पेश करेंगे तीसरी भाग होंगे और वो भी कल्याण जी अनान जी का मशहूर म्यूजिकल जोड़ी। कल्याण जी अनान जी जिन्होंने लगभग हिंदी मूवीज के लिए 250 फिल्म्स के लिए अपना संगीत दिए और बहुत सारे कल्याण जी अनान जी आज एक छोटा सा प्लेलिस्ट फिर एक बार सजा कर ले आए हैं और आप तक हम पेश करेंगे। हमारी ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनोलो, अगर व्हाट्सएप के जरिए भी बातें करना चाहोगे तो ये मुमकिन है। आपको ऐप करना है यूआर के स्टूडियो का व्हाट्सएप जो है 0303 363 0000 0303 363 0000। और रहे आपके दफ्तर के जो कार्रवाई, जैसे कि फरमाइए जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जानकारी इंफॉर्मेशन जो भी आप प्राप्त करना चाहोगे तो दफ्तर को आप तार कर सकते हो या तो मेल कर सकते हो। तार करना चाहोगे तो सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक, और वो भी नंबर जो दिया गया है 0204090807 0204090807। और जैसे मैंने कहा, मेल के जरिए भी अपना कामकाज दिवा सकते हैं मेरे प्रिय सुनवालो, और वो भी info@ujala.nl पर। और ये जब भी आप चाहोगे किसी भी वक्त किसी भी दिन किसी भी पल आप मेल कर सकते हो।

हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनोल हर एक घंटे पर आप सुनेंगे देश विदेश का समाचार, मौसम का हाल, आज सड़क का क्या हाल है, और आप सुनेंगे भी अफसोस के साथ भी 7 बजे की इश्तिहारों के बाद मृत्यु समाचार, हियर ऑन यूआर मौत की खबरें भी पुकारा जाएगा, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। Na de commercial break van 7 uur berichten van overlijden hier op UR Ujala Radio. आज का opening selection की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनवालों। कल्याण जी आनंद जी at his best beautiful music के साथ हम शुरुआत करेंगे। फिल्म का नाम है प्रोफेसर प्यारेलाल और ये 1981 का मूवी है, निहति नई नंतख्तख। बहुत लाइनें नहीं है इस गीत में, फिर भी फिल्म का टाइटल सॉन्ग है और रजिंद्र कृष्ण जी ने लिखा और खूबसूरत म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का पेश करता हूँ। एंजॉय मेरे प्यारे सुनने वालों।

Ya, beautiful Mary Pierry sinimalo. Yeta Professor Pyarelalka. Title song, tunes or theme songs सभी समेत करके एक गीत में जोड़ा गया है और राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ एक दो लाइनें हैं जो गाया गया है और कल्याण जी अनान जी का मास्टरपीस आज हमने ये नगमा के साथ ओपनिंग की है। प्रोफेसर प्यारेलाल 1981 का एक फिल्म मेरे प्यारे सिनेमालो ब्रीच साहब जी ने डायरेक्ट किया है और धर्मिंदर सिनेतमान विनोद मेहरा शम्मी कपूर सिमी गरवल अमजद खान का एक फिल्म। फिर एक बार स्वागत है मेरे प्यारे सिनेमालो। 7 मिनट बाकी है वो भी 6:30 बजने में। आप ही का मन चाह और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं। कल्याण जी अनान जी का तीसरा पार्ट आज पेश कर रहा हूँ। मैं हूँ रतन आपका यारों का यार और फिर एक बार आप सभी प्रिय सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुमार सानू को पेश करेंगे एक गीत जो बड़े अनजान साहेब जी और प्रकाश मेहरा जी ने मिलकर लिखा। कल्याण जी अनान जी के सहज और संगीत पर गीत गाया जाएगा और ये फिल्म जादूगर का एक नगमा है। जादूगर फिल्म 1989 का है। नीख नन तख्त फिल्म का टाइटल सॉन्ग पेश करने जा रहा हूँ।

मैं जादूगर और मेरा नाम है गोगा। या एक सी अमिताभ बच्चन, मुझे अमिताभ बच्चन नजर आ रहा था जब ये गीत चल रहे थे। प्रकाश मेहरा और अनजान साहब जी का लिखा हुआ ये नगमा कुमार सानू की आवाज में हमने आप तक पेश किया है। 1989 निहन तख्त का फिल्म जादूगर से निकाला गया है। प्रकाश मेहरा जी ने गीत ना सिर्फ लिखा अनजान साहब जी के साथ, फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी प्रकाश मेहरा जी, अमिताभ बच्चन, जया प्रधा, आदित्या पंचोली, प्राण साहब जी, अमृता सिंह, अमरीश पुरी, रजा मुराद, द ग्रेट भारत भूषण, जॉनी लेवर, इन सभी का फिल्म है। कल्याण जी, अनान जी के मैं देख रहा हूं गीत जो आप तक हम पेश कर रहे हैं इस घंटे में, द 80s का है। और इसी तरह से हम प्रोग्राम सजाते जाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, 60 बजे तक और ब्रेक होंगे। और जैसे मैंने कहा, इश्तिहारों के बाद अफसोस के साथ मृत्यु समाचार भी होंगे 60 बजे के इश्तिहारों के बाद। मारत इस खलुक नित फिर तो बहुत ही जल्द फिर आप सभी के सेवा में आएंगे, तो आपको ले चलेंगे द 70s और द 60s की ओर, ठीक है। 020-363-0808 स्टूडियो का व्हाट्सएप है। और है आपके कामों काज के लिए, जैसे कि फरमाइश, जरूरी खबरें, मौत की खबरें या किसी भी प्रकार का जानकारी, इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे तो आप दफ्तर को मेल करें info@ujala.nl या तो दफ्तर के दिन दफ्तर के वक्त पर तार करें 020-409-0807। एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग की ओर आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, यकीनन ये गीत आप पसंद करेंगे। महान सॉन्ग राइटर इंदवर का लिखा हुआ एक नगमा है और जो मिलकर गाएंगे सपना मुखर्जी और महेश गांधी, ऑफकोर्स कल्याण जी, अनान जी, संगीतकार, फिल्म का नाम जाबाज और ये फिल्म 1986 का है। नीख तीन से संतख्त आप मजा ले इस गीत के साथ।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनवालो, जाने जाना ओ जाने जाना, जब जब देखूं सूरत तेरी, सपना मुखर्जी और महेश गांधी जी का लिखा या गाया हुआ गीत, लिखा हुआ तो इंदवर साहब जी ने, ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग जिसका संगीतकार कल्याण जी अरान जी। जाबाज फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनवालो, और फिल्म 1986 का है नीहतिन सेसन तख्त, द ग्रेट सुपरस्टार, द कॉबॉय ऑफ बॉलीवुड फिरोज खान ने प्रोड्यूस डायरेक्ट और एक्ट किया है, और इनके अलावा फिल्म में डिंपल भी है, डिंपल कपाड़िया, श्रीदेवी, अनिल कपूर, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, जगदीप, कुलभूषण खरबंदा। या मेरे प्यारे सुनवालो, ये खूबसूरत जोड़ी इतने सारे खूबसूरत म्यूजिक बनाए हैं, इतनी खूबसूरत गाने कंपोज किए हैं, और नीहतिन फिरन फाइव तक से ये जोड़ी बना, ये दो भाइयों हैं कल्याण जी अनान जी। उससे पहले तो कल्याण जी अकेले ही कोशिश कर रहा था कुछ ना कुछ बनाने के लिए, बरों म्यूजिक डायरेक्टर के साथ इन्होंने भी काम किए हैं, और बाद में छोटे भाई आनंद जी के साथ मिलकर बहुत सारे फिल्मों के लिए अपना संगीत दी है। लेकिन क्या करूं, वक्त ऐसा आया कि कल्याण जी इस लोक को छोड़कर वहां गए हैं जहां से वापसी आना नामुमकिन है, और आनंद जी ने सोचा तो मैं अकेले क्या करूं, और उन्होंने अपना म्यूजिक बनाना बंद कर दिया है। यारत सियामर मार्वेल बखराई प्लकना, इनका मैं एक और भी खूबसूरत कंपोज किया हुआ नगमा पेश करेंगे, ये भी इंदवर जी ने लिखा, और मैं हमेशा कहता हूं मेरे प्यारे सुनो, आज फिर हम कहेंगे कि हम ना सिर्फ बड़े पर्दे पर जो होंठ हिलाते हैं उनकी जय जयकार करना चाहिए अगर फिल्म खूबसूरत हो, और ना गाने वाले जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाजों में गीत गाए, लेकिन फिल्म बनाने वाला, म्यूजिक बजाने वाला, और खास करके खूबसूरत गीत का जो सॉन्ग राइटर है, लिखने वाला, उनका जय जयकार भी होना चाहिए। इंदवर साहब जी, बहुत खूबसूरत गीत इनके हाथों से लिखा गया है, अलका याग्निक और किशोर कुमार मिलकर गीत गाएंगे कल्याण जी अनान जी की साझ और संगीत पर। 1985 नीहतिन फैवन तख्त का फिल्म पिघलता आजमा, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, हियर ऑन यू आर पेश करने जा रहा हूं।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनवालो कि तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में ना मिलेगी। किशोर कुमार और अलका याग्निक ने मिलकर गीत को गाए हैं। इंद्रवर का लिखा हुआ कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर। और बात कुछ ऐसा है मेरे प्यारे सुनवालो, 1985 का ये फिल्म पिघलता आजमा का एक नगमा जो शम्मी ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है, शशि कपूर, राखी, देवन वर्मा, रति अग्निहोत्री का एक फिल्म। लता जी ने ये फिल्म के लिए एक गीत गाए हैं। आगे चल के बाकी प्रोग्राम जो हम पेश करेंगे कल्याण जी अनान जी का, तो जरूर वो नगमा भी हम पेश करेंगे। लेकिन बात कुछ ऐसे हुआ कि उन दिनों लता जी के पास वक्त नहीं था और मूवीज के लिए गाने के लिए। इधर इन विल लता, इधर इन विल किशोर कुमार, इधर इन विल आशा। कभी कभी ऐसा हो जाता है तो गाने में मुमकिन, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म को रोक दिए देते हैं और अगोर लेते हैं कि जब लता जी गीत गाएंगे तो फिर गीत रिकॉर्ड होंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो फिल्म उनको बनाना है वक्त के हिसाब से, वो रुक नहीं सकता। वांडन कोम आंध्र दिंग स्वेरें खफार, तो ये है वजह कि ये फिल्म के लिए अलका जी को लिया गया है कुछ गाने गाने के लिए। और ये गीत अलका जी ने गाए किशोर कुमार के साथ, जो एखलक लता जी को गाना चाहिए था और काफी पॉपुलर हुआ। और अलका जी तो आप जानते हैं आजकल नाइटिंगेल अलका जी कितनी सारी खूबसूरत नगमाओं के साथ हमें खुश किए हैं और अभी गा रहे हैं, शोज दे रहे हैं। तो ये वजह है मेरे प्यारे सिनेमावालों, एक फिल्म की ओर आपको ले चलेंगे। पता नहीं ये फिल्म रिलीज हुआ या नहीं, मैंने तो ये फिल्म को नहीं देखा। मुझे केलक से है एक एब्ड फिल्म नीत खजीन, लेकिन तमाम नगमाएं बहुत खूबसूरत है और सबसे पॉपुलर ये फिल्म का नगमा मैं निकाल कर आप तक पेश करता हूं। और अगर मौका रहा बाकी प्रोग्रामों में तो जरूर और भी नगमाएं ये फिल्म से निकालेंगे। फिल्म का नाम है बंड होठ और ये 1984 का है। नीहतीन फीरन तख्त बंड होठ का एक बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, एक नगमा जो कमार जलालाबड़ी जी लिखे हैं और साधना सरगम और अनवर हुसैन मिलकर गीत गाएंगे कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर। एक लव सॉन्ग है तो हम इसे प्यार से सुने। ये नगमा

मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत फ्रॉम द मूवी बंड होत हमने आप तक पेश किया है। कमार जलाला बड़े जी का लिखा हुआ और मिलकर गीत गाए हैं अनवर हुसैन और साधना सरगम। ये फिल्म निहतिन फीरन तख तख का है 1984 और राज मड़ब्रोस जी ने डायरेक्ट किया है। शशि कपूर, आखिर गुलजार, उत्पाल दत्त, बिंदु जलाल अग्गा का एक फिल्म। एक आखिरी गीत मेरे प्यारे सुनों, इस गीत के बाद ब्रेक। आप सुनेंगे अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कलाकार सुरेश वाडकर और साधना सरगम, मनोज कुमार और इंदवर का लिखा हुआ गीत। मेरे प्यारे सुनने वालों, इस गीत के बाद ब्रेक, और ब्रेक उस पार आप सभी से फिर हम जरूर से जरूर फिर मिलेंगे।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से परिवार मुंगार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 81 साल के आयु में एनन तख्त ख्यार और पत्नी श्रीमती सोनिया बख्तावर मुंगार के पति लड़कन महेंद्र, गीता दत्त, मनोज गुरदत्त और बेटी मुंगार के पिता, चार पतो और एक दामाद के ससुर, सभी लड़कन के आजा, नाना, परनाना और पर आजा। आम्स्टरडम ब्रंतानो स्ट्रात का रहने वाला श्रीमान बेसुंदत मुंगार के मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम में पहले फरलैंड हानास्लुस्टवेख का रहने वाला था। आम्स्टरडम से परिवार मुंगार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए सोमवार को 81 साल के आयु में एनन तख्त ख्यार औत पत्नी श्रीमती सोनिया बख्तावर मुंगार के पति लड़कन महेंद्र, गीता दत्त, मनोज गुरदत्त और बेटी मुंगार के पिता, चार पतो, एक दामाद के ससुर और सभी लड़कन के आजा, पर आजा, नाना और पर नाना। आम्स्टरडम ब्रेंतानो स्ट्रात का रहने वाला श्रीमान बिसुंदत मुंगार के मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम में पहले फरलैंड हानास्लुस्टवेख का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले शुक्रवार की रात में 7 बजे से 8 बजे तक फ्रेडहाफन फन सेवन टॉट आखतूर उत्फार्ट सेंट्रम वेस्टगार्डे के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 4 बजे से जातदाख मेदाख 4 यूर किए जाएंगे। वेस्टगार्डे क्रिमेटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 20 05 03 55 06 20 05 03 55। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार मुंगार के दुख में शामिल है।

प्यार का बंधन खून का रिश्ता टूटे से ना टूटे, मुकेश जी और लता जी की आवाजें मेरे प्यारे सुनने वालों। ये खूबसूरत गीत राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ है और लता जी और मुकेश जी ने मिलकर गाए हैं कल्याण जी अनान जी की साज और संगीत पर। फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों खेल खिलाड़ी का और ये फिल्म 1977 का है। अर्जुन हिंगोरानी जी ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। धर्मेंद्र, देव कुमार, हेलन, शबनाजमी, डेनी दिनजोंगपा और याद वासो को निगो खौसरिन, उसका नाम तो मैं भूल गया, जोनी वॉकर, नरेंद्र नाथ, इन सभी ने ये फिल्म में काम किया है। एन ओक फोर्स में पहला मूवी जिसमें मैंने शक्ति कपूर को भी देखा। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनने वालों, 9 मिनट बाकी हैं और वो भी 7:30 बजने में।

आप ही का मनचाहा हाँ, और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये बैक टू द फ्यूचर। आप सभी सुन रहे हैं लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से। मैं रतन राम दुलारे पांडे पेश कर रहा हूँ ये प्रोग्राम। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार, बहुत बहुत स्वागत है। कल्याण जी अनान जी का तीसरा प्रोग्राम हम सजा रहे हैं। इतनी सारे गाने हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और इनका भी काफी प्रोग्राम हम बनाएंगे भी। दैट इज इनिंग व्हाट सीकर इज ऑन दैट या वो कनु दिलचस्प नहीं सो मार लात लिख। अगले मूवी की ओर आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। खून पसीना फिल्म का नाम, ये भी 1977 का है, 1977। और ये फिल्म का एक गीत अनजान साहब जी का लिखा हुआ, जो लता जी गाकर सुनाएंगे कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर, कि मैं तेरी हो गई और तू मेरा हो गया।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनालों, मैं तेरी हो गई और तू मेरा हो गया। लता जी की आवाज, अंजान साहब जी का लिखा हुआ नगमा इन्होंने गाकर सुनाए। कल्याण जी, अनान जी, जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं आज तीसरी बार, इनका म्यूजिक है। फिल्म का नाम खून पसीना, 1977 का मूवी, 1977। और राकेश कुमार जी ने डायरेक्ट किया है। द बिग बी अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा, निरूपण रॉय, कादर खान, भारत भूषण, अरुणा रानी, गोगा कपूर और क्या नाम है, आसरानी और अमजद खान का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनो, आपको मालूम रहे कि मोर्ख कल जो है बृहस्पतिवार, गुरुवार दोनों दख 15 अक्टूबर दन मैंने करनी, मैं प्रोग्राम नहीं बनाएंगे और एक खास वजह है, लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं। हम आपको बताएंगे नहीं, एक खास वजह है जिसका कारण मैं कल प्रोग्राम नहीं सजाएंगे दिल की आवाज। लेकिन आने वाले शनिवार अतिस ईफ फाउत खान फोर वीक और दत हीफ अलमाल में टेक्निक तमाक नीत मैं फाउत नीत यू आर फाउत, लेकिन हम प्रोग्राम बना ना सके। लेकिन आने वाले शनिवार 17 तारीख को हम जरूर से जरूर कोशिश करेंगे आप सभी का सेवा करने का, लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। तो आप मत भूलिए, कल मैं नहीं रहूंगा लेकिन आने वाले शनिवार हम जरूर से जरूर कोशिश करेंगे प्रोग्राम सजाने के लिए सैटरडे नाइट फीवर रात्रि में 7 बजे से 12 बजे। अंजान साहब जी का लिखा हुआ एक और पॉपुलर डांस मुजरा सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं। ये गीत इतनी पॉपुलर है क्योंकि न सिर्फ खूबसूरत गीत है जो लिखा गया है, ये गीत का म्यूजिक भी लाजवाब है। लता जी और किशोर कुमार ने बहुत खूबसूरत गाए हैं और पिक्चराइज भी किया गया है अमिताभ बच्चन और रेखा जी पर, बहुत ही खूबसूरत। पेश करता हूं वो नगमा फ्रॉम द मूवी मुकद्दर का सिकंदर, 1978।

सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तू हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। लता जी और किशोर कुमार की आवाजें, खूबसूरत गीत अनजान साहब जी का लिखा हुआ और कल्याण जी अनान जी संगीतकार, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुन वालों, 1978 का फिल्म, 1978 प्रकाश मेहरा प्रोड्यूस डायरेक्ट किया है ये फिल्म, जिसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा, राखी, रंजीत, अमजद खान, कादर खान, निरूपा रॉय, डॉक्टर श्री राम लागू, मायूर, इन सभी ने काम किया है। नतुलक सुलक्षणा भी फिल्म में है, निरूपा रॉय, मोई फिल्म। एक आइटम सॉन्ग हो जाए, क्यों, क्या ख्याल है? वंस अगेन किशोर कुमार, लेकिन अब की बार नाइटिंगेलाशा जी के साथ, रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ नगमा। रविंद्र जैन कमाल का एक कलाकार है, लिखते हैं, बजाते हैं, इतने खूबसूरत गाने इन्होंने कंपोज किया है। अंडमान स्प्लिंद है सोसी हमार दिल फात नीत met een of andere handicap. Als je wil, dan kom je er. Je pal chanchal khona dena kahin o diwani. Beautiful song. Bahut dino maine ye geet nahi suna, mere pyare suno walon. Aur ye itni khoobsurat item song hai. Kalyan Janan ji sangeetkar, jaise maine kaha, आशा जी और किशोर कुमार मिलकर गीत गाएंगे, काली चरण फिल्म का नाम, 1976 का। नहीं, लेट्स एंजॉय।

ये पल चंचल खोना देना कहीं ओ दीवानी। नाइनटी कैलाशा जी और किशोर कुमार, ये आइटम सॉन्ग रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ मिलकर गाए हैं, और वो भी कल्याण जी अनान जी के साथ और संगीत पर। 1976 निहतीन सेशन से फतह का फिल्म काली चरण से हमने नगमा को निकाले। फिल्म का डायरेक्टर सुभाष घाय, शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा का फिल्म, रीना रॉय के साथ प्रेमनाथ और अजीत भी है। कौन है, मदनपुरी हेलिन, डैनी डिनजोंगपा, काली चरण मूवी फिल्म। हम धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं 8 बजे की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों, और 8 बजे के इश्तिहारों के बाद नफरलात वसीफ तक नखावा एक न दियार सिस्तक। तो मैं सोचता हूं क्यों ना ये गीत आपको हम सुना दें, एक नगमा जो मोहम्मद रफी साहब जी और लता जी मिलकर गाएंगे, गुलशन बावरा जी ने लिखा, कल्याण जी अनान जी ऑफ कोर्स संगीतकार। 1973 का फिल्म संजीर से हम नगमा निकालेंगे। संजीर का ये नगमा दीवाने हैं दीवानों को पेश करता हूं।

0: दीवाने हैं दीवाने को नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। रवि साहब जी और लता जी की आवाजें, गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं, कल्याण जी आनंद जी के साथ और संगीत पर। 1973 निहतिंद्रियन सी फतह का फिल्म जंजीर, और ये फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा जी, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, और खुद जो लिखे हैं उन पर ही ये गीत भी पिक्चराइज किया गया है। गुलशन बावरा जी, प्राण साहब जी, अजीत बिंदु, इन सभी ने काम किया है। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, रतन का फेवरेट सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं, और फिल्म का नाम भी है रंगीला रतन। 1976 निहतिन सेशन से तक का फिल्म है। गुलशन बावरा जी ने ये गीत को भी लिखा और मिलकर खूबसूरत गीत गाएंगे किशोर कुमार और लता जी, और वो भी कल्याण जी आनंद जी के साज और संगीत पर। ये नगमा।
1: रतन, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम कौन हो, क्या हो, रतन हो या नहीं, इससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं। फूल जंगल में खिले या बाग में, फूल फूल ही तो होता है रतन।

तुम ही हो जाने जा अब मेरी जिंदगी। किशोर कुमार और लता जी की आवाजें, गुलशन मावरा जी का लिखा हुआ ये खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, वो दोनों ने मिलकर गीत गाए हैं कल्याण जी अनान जी के साथ और संगीत पर। रंगीला रतन फिल्म का नाम, रंगीला रतन 1976 एक फिल्म जो फ्लॉप साबित हुआ है बॉक्स ऑफिस में, लेकिन नगमाएं ये फिल्म का कुछ ऐसे हैं लाजवाब बेमिसाल। आज के लिए हमने इस गीत को चुना है, रामनाथन ने डायरेक्ट किया है, ऋषि कपूर, प्रवीण बाबी, द ग्रेट अशोक कुमार, अजीत जीवन और सुंदर दादा का फिल्म। एक आखिरी गीत मेरे प्यारे सिनोल फ्रॉम द मूवी स्वीट हार्ट, और वो भी रफी साहब जी की आवाज में। लता जी साथ नहीं देंगे, सिर्फ रफी साहब जी गाएंगे। और इस गीत के बाद ब्रेक मेरे प्यारे सिनोल।

ओरे ओरे, धरती की तरह हर दुख सहले और सूरज की तरह तू उथलती जा। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, अपनी डट भरी आवाज में ये डट भरा गीत इंदौर का लिखा हुआ गाकर सुनाए हैं कल्याण जी, आनंद जी, जिसका हम आज तीसरा प्रोग्राम सजा रहे हैं इनकी साज और संगीत पर। फिल्म का नाम सुहाग रात, मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये फिल्म 1969 का एर भट्टाचार्य जी का डायरेक्ट किया हुआ ये फिल्म, बहुत खूबसूरत मूवी जिसमें जंपिंग जैक जितेंद्र और आयश्री ने काम किया है, और इन दोनों के अलावा महमूद साहब जी धूमल और सुलक्षणा भी है फिल्म में। 11 मिनट गुजर चुके हैं 8 बजकर, मेरे प्यारे सुनने वालों, दिस इज यू आर आपका मनचाहा और फेवरेट स्टेशन लाइफ एंड आर की वार के स्टूडियो रतनाम से पेश हो रहे हैं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। मैं हूं आपका यारों का यार रतन राम दुलारे पांडे, और सेवा आपका हम करेंगे रात्रि में 9 बजे तक, और वादा के मुताबिक हम द 60s में, हाँ जी द 60s में हम बढ़ चलेंगे। وخان ساكا فنيهن سيسخ نارو وسين للوار وكوم ایک دینا تو نی فیر کوم اتنی سارے گانے اور بہت سارے ایپرز ہیں ابھی ہم دیکھیں گے کہ کون ہے جو مجھے ایپ کیا ہے ان ایر خفال فن نو ایون موی آندر لیچے اور ایپرز ایک خاصو میں تین کہہ کر کی کون ہے اور نتولک बहुत बहुत धन्यवाद कि ये कश आप उठा रहे हैं सुनने के लिए और ऐप करने के लिए। एक गीत मेरे प्यारे सुनो, वंस अगेन गुलशन भावरा जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग है, और अपनी खूबसूरत आवाज में लता जी गीत गाएंगे कल्याण जी, अनान जी की साज और संगीत पर। कि आज की रात सजन मन चाहे रहूं तेरी बाहों में, या स्वयं मारवेख, क्योंकि गीत लाजवाब बेमिसाल है।

आज की रात सजन मन चाहे रहूं तेरी बाहों में। खूबसूरत गीत प्यार भरा लता जी की आवाज, गुलशन भावना जी का लिखा हुआ संगीतकार, ऑफ कोर्स कल्याण जी अनान जी, केवल पी के शिव जी का डायरेक्ट किया हुआ मूवी विश्वास से हमने नगमा को निकाले। और ये फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों 1969 का है, नेहति नेहनन ससुर। स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी uit Gouda, dankjewel. Sorry, uit Zoetermeer moet ik zeggen. स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी uit Zoetermeer, dankjewel. आपके आपके लिए धन्यवाद भी हम कहेंगे। प्रभा जी uit Amsterdam Centrum, और धन्यवाद हम कहेंगे Amstelveen का सुशीला चंद्रिका सिंह जी समझनिया uit het mooie Scheveningen, लक्ष्मण जी का भी ऐप आए हैं। लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए, और लक्ष्मी जी हमारे दिलों में है। कैटरीना uit Amsterdam, dankjewel कैटरीना। और स्खीदाम रोटरडाम का रोहिणी कल्लू जी भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। फिर एंड्रू और चित्रा जी अट मार्स ब्रुक, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिवाल आपके ऐप के लिए। लीफ सफूरा जी अट एप्पल दोरन, सफूरा सुब्राती जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके ऐप के लिए। अनुत दनहाग नतुलक मीके, लीफ मीके अंकिवाल आपके ऐप के लिए। आईफी जहांगीर uit Amsterdam, दिल से शुक्रिया आपके ऐप के लिए आईफी जी। और हार्लेम का मैं देखता हूँ आइलिन का भी ऐप आए हैं। आइलिन डंकीवेल, डंकीवेल एंड यू हैव ग्लाइक और व्हाट यू रिएक्टेड दैट हैव यू ग्लाइक दैट इज द रीड वारम इकर मॉर्निंग बेन। मेरे प्यारे सुनो, अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे। और अगले मूवी या अभी 1969 का है, 1969, हसीना मान जाएंगी। अरे क्यों नहीं मानेंगे, क्यों हसीना क्यों नहीं मानेंगे। ये मुतोह ये बेस्ट हूं या तो रवि साहेब जी का एक नगमा, प्रकाश मेहरा जी का लिखा हुआ, कल्याण जी अनान जी जिसका संगीतकार है, मैं पेश करने जा रहा हूं। हियर ऑन यू आर

बात पे तुम रूठा ना करो, दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा ना करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक, फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर तोड़ के दीवारों से चिल्लाया करोगी, ओ दिल

आग उठेगी तूफान उठेगा मोहब्बत जाग उठेगी हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद सर के बल चल कर आऊंगा सुनकर तेरी फरियाद दिल से मेरे खेले हो अब तुम सर से भी खेलो ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला और दिल

ओ बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़ में ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना।

0: में सनम हम गम तेरे और दिल पर सोनिए तेरे हैं हम तेरे
1: दिल बढ़ जानिए तेरे हैं हम तेरे। मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत जो हमने पेश किया है रफी साहब जी की आवाज, प्रकाश मेहरा जी ने गीत को लिखा, कल्याण जैनान जी संगीतकार, फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी और ये फिल्म नीखंती नीखनन सेसक का है 1969। प्रकाश मेहरा जी ने भी डायरेक्ट किया है ये फिल्म। शशि कपूर बबीता जॉनी वॉकर का एक फिल्म। अब की बार एक प्यार भरा और उसके बाद एक दर्द भरा क्यों, क्या ख्याल है?

और दोनों ही नगमाए मुकेश जी गाएंगे। हाँ जी, पहला गीत एक पॉपुलर सॉन्ग है मेरे प्यारे सुनने वालों, जब भी ये गीत चलता है लोग पसंद करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है लोगों के। मैं ये गीत पेश करने जा रहा हूँ, इंदवर ने लिखा और द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी और लता जी मिलकर गीत गाएंगे कल्याण जी आनंद जी के साथ और संगीत पर। सरस्वती चंद्र फिल्म का नाम, और सरस्वती चंद्र फिल्म जो है 1968 का है, नहीं हतीन अख्तन सिस्तर। कहते हैं कि भूल तुम्हें भेजा है खत में, और ये भूल नहीं मेरा दिल है। इफोनो दौलत है दनाख, दंकीवेल आपके ऐप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तूनी इसरी अहतालमेर दंकीवेल बड़ी दंकीवेल फोर ये ऐप।

फूल तुम्हें भेजा है खत में, और ये फूल नहीं मेरा दिल है। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, रोमांटिक सॉन्ग इन द वर्ल्ड का लिखा हुआ मिलकर गीत गाए हैं द मेलोडी क्वीन लता जी और द हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश कल्याण जी आनंद जी के साथ, और संगीत पर सरस्वती चंद्र फिल्म का नाम। और ये फिल्म जैसे मैंने कहा 1968 का है। नीहती नख्तन सिस्ख गोविंद सरैया जी ने डायरेक्ट किया है, मनीष नूटन का एक फिल्म। और फिर एक बार मुकेश जी को हम पेश करेंगे जैसे मैंने कहा एक प्यार भरा और एक दर्द भरा नगमा। लेकिन काफी पॉपुलर है ये गीत और सब बहुत सारे लोगों का फेवरेट सॉन्ग भी ये है। एंड फॉर माय वेलकम बी जोर वंस अगेन द हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश जी गीत गाएंगे। कमार जलाला बड़ी जी का लिखा हुआ गीत, उपकार फिल्म का नाम, और ये है 1967 का मूवी नीहतिन सेवनन से सह कल्याण जी आनंद जी ऑफकोर्स संगीतकार मेरे प्यारे सुनने वालों। और 2 मिनट गुजर चुके हैं 8:08।

दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, अरमानों पे क्या गुजरी है। द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी की आवाज, कमार जलाला बड़ी जी का लिखा हुआ ये नगमा मुकेश जी ने गाकर सुना है, कल्याण जी अनान जी के साझ और संगीत पर। फिल्म इतनी कठिन सेवन सेसख, मेरे प्यारे सिने वालों, 1967 मनोज कुमार ने डायरेक्ट किया है और इन पर भी ये फिल्म में गीत पिक्चराइज किया गया है। आशा परेख भी है फिल्म में, प्राण साहिबजी प्रेम चोपड़ा और कमिनी कौशल इन वन ऑफ माय फेवरेट कन्हैया लाल मदनपुरी। मेरे प्यारे सिनों, फिर एक बार हम कह देते हैं कि कल मोरख आवंट 15 अक्टूबर को प्रोग्राम दिल की आवाज नहीं रहेंगे हियर ऑन यू आर। मैं प्रोग्राम कल रात्रि को पेश नहीं करेंगे। आप सभी से फिर हम मिलेंगे आने वाले शनिवार 17 अक्टूबर रात्रि में 7 बजे एनाउंसर ओवरलाइडिंग्स बरिख्त सैन दबेने करना। तो हम पेश करेंगे प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर विद द ब्यूटीफुल लोकल्स द खाव फेश ऑफ पावर। ठीक है, दिल ने पुकारा फिल्म का नाम, दिल ने पुकारा 1967 का एक फिल्म है, 1967। वंस अगेन इंदवर जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग, हमको होने लगा है प्यार तुम पे, एक बहुत ही खूबसूरत गीत है मेरे प्यारे सुनने वालों। और ये गीत मिलकर गाएंगे लता जी और रफी साहब जी, संगीतकार ऑफ कोर्स कल्याण जी आनंद जी।

तुमको तो होने लगा है प्यार तुम पे प्रियतम्मा। रवि साहब जी और लता जी की आवाजें, इंदवर का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर। दिल ने पुकारा फिल्म का नाम मेरे प्यारे का मूवी, डायरेक्टर का नाम मोहन शशि कपूर, संजय खान, राजश्री, हेलन महमूद, अंशला सखदेव, मनमोहन कृष्ण का एक फिल्म। अब एक धमाकेदार गीत हो जाए, क्यों क्या ख्याल है? ये आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ नगमा है और वंस अगेन रफी साहब जी एन नटूल कल्याण जी अनान जी की म्यूजिक। निहतिन सेवन से 1967 का मूवी फिल्म आमने सामने का ये धमाकेदार सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं।

नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है ये काम, हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम। मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर। 1967 में हतीन सैफ नंदस्तक का फिल्म आमने सामने से हमने नगमा को निकाले। सूरज प्रकाशी का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी जिसमें सुपरस्टार शशि कपूर और शर्मिला टैगोर ने काम किया है, और इन दोनों के अलावा प्रेम चोपड़ा भी है, मदन पुरी, राजेंद्र नाथ। हम सफर अब ये सफर कट जाएगा अगले गीत का बोल, ये भी आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ नगमा है मेरे प्यारे सिनवालों। और द हार्ट ऑफ मिलियन सुमायती मुकेश जी गीत गाएंगे लता जी के साथ, कल्याण जी अनान जी के साथ और संगीत पर। फिल्म जुआरी का नगमा बैठनी है दिन अख्तन से साथ।

हम सफर अब ये सफर कट जाएगा। द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी और लता जी की आवाजें, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं कल्याण जी आनंद जी के साज और संगीत पर। जुआड़ी फिल्म का नाम और फिल्म 1968 का है। नीहती नख्तन से सूरज प्रकाश जी का डायरेक्ट किया हुआ, जिसमें शशि कपूर, नंदा, तनुजा, रहमान साहब जी ने काम किया है। पहले से आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ, इस गीत के बाद हम यहाँ से रुखसत होंगे। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टंकीवाल शुक्रिया। आप सभी से फिर हम मिलेंगे आने वाले शनिवार रात्रि को 7 बजे से 12 बजे, जबकि हम पेश करेंगे प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और अदा परसे। रिमेम्बर आई लव यू ऑल, तू जाने दा। किशोर कुमार और शमशाद बेगम।

बिनकोट रावल तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, सुन वालो। तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोट रावल तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

ये है उजाला रेडियो सुना लो और यहीं से शुरू किया जाता है वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय मिदक शो। आज इस वुंसडाग और भी 14 अक्टूबर का प्रोग्राम मोई दाग। द सन शाइंट बारिश ना हो हैगा एन हेलबूल मेंसेन साइन फ्राई vooral Noord-Holland mee zijn de kinderen vrij. Vakantie, Higa. Dus het is vakantie. Vakantie. Mooie tijd, toch? You are Ujala Radio, Kusire Coffee Chai, middagshow. We zometeen de headlines en luchtige onderwerpen die we gaan bespreken met Anand Chandrika Singh. Aaj ki shaam ki programme. Maar, programma shuru karne se pehle, chaliye hum aapko sunate hain ki dil hai ki maanta nahin.

तो उजाला रेडियो के जरिए भी आपने सुने हैं उजाला कॉफी चाय मेरा शो शुरू हो गया है सुनवालो। और हम आपसे बता दूं आज भी फरमाइश है दो बजे से सुन लेना उजाला रेडियो पर फन ऑफ द फरमाइश और उजाला रेडियो तुम्हारी फरमाइश देवे तोर फरियारी है तोर जन्मदिन है सालग्रह है तोर ब्याह हुई गया खैर बिन कोतरा या तो और भी कोई खुशियाँ है dan stuur jij een mail naar info@ujala.nl 15 aanvragen voor €100 op Ujala.

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल